0: कडिम फतिम फस कडि 30 मिनट में दिवेहराज जेगाडो
1: अलगुन मेंगे प्रोग्राम तंग हम चिफा वागतुं दिन गेनस्तेनी कीरित कुरान के दिवे तर्जमा कीरित कुरान के दिवे तर्जमा में दुगेनस्तेनी सूरत यूसुफ हद्दिया तिमवन आयतुं फशायगिन इस सूरत के सतेक 11 वन आयतु गनियलं आदे सूरत गनियला तर्जमा विदाल देवा फवनी डॉक्टर मोहम्मद हनीफ
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله گه اسم فلم فشاگنمه

0: ميعو دنيا جترين
1: মাদার্সি দাওয়ার স্কুল মার হলায় কি আম গোতে গাহাম আবার বড় কিয়ম গে কি কান্ধে তো গাহাম হরিহা কুদেম বেশ সামিল হয়ে গেম উড়ে আনে দোষ করে টেস্ট তাকাং হাম হরিহা কুদেম বেশ দাস করাম গেন্দা আর বড় সামাগাং এ বা দেবে রঙল নাতিজা এর হাম হরিহা কুদিন না বেশ একাম কুদিন না দত্তমেন তে কুদিন না হান্দাং কল দেন বেড়া এক কাম কি বারণ মামু গান মে দনিয়া তেরে গা হামায় কানি ফতুন দাস কেন তে কুদিন না মুস্তকবলগ ফুরিহম কামিয়াবিয়ং হোদমকি তংকড়ং উদগো কামকাবান এ মামিকং কামিয়াব কুরমটকা হুরিহা কুদেন বেস্তাফাত একি হুনর্ত দসকো তাফাত একি কান্ত তক কুরন দসকুরমকি ওয়ার ওয়ারাম মুহিম কামে এম ওয়েমা কিয়ম কে তেরেগ উলে ইরুয়েস ইতুর হরকাত তক আচিগ বাভেরিবে তিকুদিং গে হুনর্ত তিকুদিম নহম ওয়ে ওয়ারকম বিয়াস পড়ক কুরিয়ারোম মাসেকে কুরং হাম দত্তমে আবদস তিকুদিন নসে হেতেরিবঙ্গে মেহারো আনকাস ইতর কুজকা ওয়াক দক্কালং মতি গুড়া লাইফ আসসালামু আলাইকুম
2: ওয়ালাইকুম সালাম
1: তুগ
2: উলবা
1: কেনে গাল
2: সাঙ্গালো
1: তুগ এ বজে হে কোড়া কামে কলা দেঙ্গে তুগ
2: উলবা
1: রেডিও গাড়ো মাড় কলা ফ ফোন দত্তে গাড়ো হালামিঙ্গে দত্তে গে বাইবে হাম দত্তে দক্কা হুরি হা ওয়াকেন আনিকা
2: ওকে
1: তোগা আমি তো কম কামে মে কলানি কি কলানি হে মে তো তোগা
2: সাবে নকোরা
1: কামে নকোরা আমি প্রোগ্রাম গ বাইরে আমি তোগা মারা বিজি কো উলে একম হিওয়ানি গে ইবে আড় তাকু গেতেরে গ কামে কোরিয়া দানিতা
2: নো
1: নো তোগা
2: লব্বা
1: মাসেকতে তৈয়ার তো মে তো
2: লব্বা
1: হিঙ্গা এহ মা করে নগন্দ হাইম ফেশিগেন কাফ মেদো বাকি আকুরতং এ বহরে কোন করে নগানি হাইম ফেশিগেন কাফ মেহার আকুরতম হেরি বাকি আ
2: কি নগানি
1: হ্যাঁ আর বিসনা ফতু গামিনে গি হা হিঙ্গা দো হা গয় মাসিকে বালাল
3: বাস মালং
1: আনিকাস মেলেবনি বাসমালা মেফাহারো বাসমালামুম তুগায় মেলেবন লফসকি আলিফা ইঙ্গা আলিফা মে লফস বেণ কো গেন জুমলা ইং হাদাল আলিফা তুগা আলিফা তুগায় মেলেবন লফসকি ಮಾಡಿಕೊಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ನಿವ್ವಾಲ ಫೋರಿ ಫೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿ ಫೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಗುಳೈತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಡಿಕ್ಕಾತಿ ಅಡು ಇವಣಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಂಡಾಲಂಗ ಏರು ಹಂಗೆ ಅಡು ಹಾಲಂ ಫಸೆ ಹವಾಣಿ ದತ್ತೆ ಬಸ್ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತಕ ಕುರಿಯದ್ದ ಅಂತ ಅಂಕೊಳಂಗ್ ಒಂದ ಗೂ ಅಣಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಡು ಇವೆಂಗ ಓಕೆ ಹಾ ಮಿಹಾ ರಂಗಳು ಇಚ್ಚಂಗೆ ದೆಮ್ಮ್ಯಾತಿ ವಾಹಕ್ಯೋ ವಾಹಕ್ಯೋ ಹಂಗೆ ತಯಾರ್ ಎಸ್ಸಹರಕ್ಕ ಜಂಗಯ್ಯಗ ಬುಳಲಕ ದೂನ್ಯಂ ಉಳುಣು ಎ ಜಂಗಲೆಗೆ ವರ ದುರುಗ ಉಣ್ಣ ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗ ಕೋರೆಂ ಓಯ್ ಮಿಕಂ ಬುಳಲಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಎದ್ದುಕು ಮಿ ಬುಳ ವರ ಬೊಡ ಕರುಹಿಕ್ಕಾಗೆ ಬುಳ ಹಿಂಗಮುಂ ಹಿಂಗಮುಂ ದಣಿಕೊಂ ಮಿ ಕೋರ್ ಫೆಣುಣು ದೆನ್ ಕಿನ ವಾಣಿ ಎಸ್ಸಹರ ಬುಳ ಎಕೋರಂ ವರ ಗಿಣ ಫೆಂಬುಯ್ ತೇಮಸೆಕ್ಕೆವೆಸ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊಲ್ಲಾಫ ತುಗಾವೆಸ್ ಮ್ಯೋತಿ ಮಸಿಕ್ಕತ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತ ನಿಮ್ಮಲೇರು ತೇಮಸೆಕ್ಕೆಸ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುವತ ಗೊಸ್ಸ ಹಂಗೆ ಮ್ಯೋತಿ ತುಗ ಎಬತ್ತ ಇತೋರ್ ಹದಿಯಾ ಇದ್ದೆ ಅಡು ಹಂತಿಮ ಕೂದಿಣ್ಣ ಕೊಂ ಹದಿಯ ಮ್ಯದ ಮ್ಯೋತಿ ಪಂಜೆ ಲೆಮೆ ರಾವರೆ ಅರತೆ ಲವಯ
2: ಅರತೆ
1: ಅರತೆ ಅವಕ್ಕಿಯಾಲಬ ನತ್ತಮೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಾಣಂಗೆ ತ್ಯಾರತ ಜವಾಬ್ದೆ
2: ಎತ್ತರೆ ಕಾಚೆ ಬೇರು ಕಾಚೆ ಮೆದನ್ ನುಕತೆ ಮೆದುನುಕ ಎಲ್ಲಾಲನೆ ಕೋಚೆ
1: ಎತ್ತರೆ ಕಾಚೆ ಬೇರು ಕಾಚೆ ಮೆದುನುಕ ಎಲ್ಲಾಲಾಯ್ಚೆ ರಂಗಳತ್ತಮೆ ಬುಣೆವಣಿ
2: ಮದೆ
1: ಮಧುಗೆ ಎತ್ತರೆ ನುಕ ಎಲ್ಲ ಲಾತ ಎತ್ತರೆ ಆ ಬೇರ ಕ್ಯಾತ ಮಧುಗೆ ಓಕೆ ಎಹಮ್ಮ ಎಹಮ್ಮ ಅಣಿಕ ಸಾಯ್ಚೆ ಮಿದಸ್ವಿ ದತ್ತಿ ಅವ್ವೆಸ್ತ ಎಹಮ್ಮ ತುಗ ಗುರುತ ಗೋಸಮ್ಮ ತಿಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಡು ಹಾಲಂಗೆ ಇನ್ನಚ್ಚೆ ವಕೀಲಾಣಂಗೆ ತುಗಾಯ ವಕೀಲ ಫಣಿಕ ಸ್ತಿಕುದಿಣ್ಣಂಗೆ ಇತರ ಹಾದಿಯ ಗೆಣಸ್ತೀಫ ಬದಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.

0: मैं फहरो के बावरिया की यशमु अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: यशमु
1: लब
0: कोबा केनेंग हालो
1: रंगालो
0: सत्तमें के हाल केने सत्तमें के हाल समय रात को ती वारे रंगालोंगे यशमु कोबा मसे कत्ते का तैयार था
1: लब
0: हमें महिंगा दो दसनो को गुरुवत दामा
1: लब
0: नूनुं फेशिगें गोस्सा लवियन्य बाकिया कोरता महरे कौन करे नागानी नून रा बा लवियन मैं हतर अकुर बाकी में होते नून नून ओके है मम्मी बालालनी नून को मसे केंगे नून को मियोती नून को मियो मसे कतके नून ताशे वेचेंगे हिंगा नून को मसे के बालाला
2: फीको
0: फीकोय फीकोय मैं फहरो यशमु मेले बुनी फीकोय गेलिस्टुन यशमु फाहग कोलन जहनी रंगाड़ सिफतक की को बातोंगे
1: लब
0: मैं तंकोले दिगो लिस्टे मैं फहर मैं अति दते किया देना दिगो दिंगे तेरें हम वरक गिना को दिंग कोरा एकी कांतत तो गेलिस्टेंगे एगे तेरें रंगाड़ सिफत फाहग कोलनेंगे
1: लब
0: तैयार रेगंडो आवाहन नहीं दों, गीना एक गेम करों, फायदा होए कहाँ ना क्यों, ऐहं को दिन नंग उन दो गो करों, वागोतक कामे हैं तो, मैं होन नंग इह्तिराम करों, मैं होन नंग इह्तिराम करों, फायदा हो रहे कारण क्यों? उन दागों करों, वागो तक कामे हैं तो इह्तिराम करों।
1: फायदा हो रहे कारण क्यों? इह्तिराम करों। वागो तक कामे हैं तो आवाहन नहीं दो।
0: बराबर होंगे? हम वारा फंसे हैं कमाए को मैं मसे क्या वैसे मिफूरी हम कॉल दी। मिकते मैं मस्से का तो गा मैं और रंगलो सिफताओं के तरह यशमांग एम में गावाय दों कोरवेनी कौन कंता तक्के
1: आवाहन नहीं दो
0: क्या हार को नहीं दंग और शोर नंग को मेरे को
1: एट वांगोलेरा
0: अशेष जहाँ वैरंग और शोर नंदो
1: लब्बा
0: दें क्या हार को हेलनी
1: हाय जहारो
0: हम भी माँ वारा रंगलों के हम माँ रेगांडो हमा हशिगांडा बैनुंबा वारा नीदिली बिफा होना निंगे यशमो आदि अब्बा वाह क्यों तैयार था
1: लब
0: वाह क्यों के मैं तो के वाह क्या के मैं वाला नहीं बोला का दो निंगे दत क्या देना वाह के मेरा कोरिया गुस्से की साब ऐसा हरे का जंगल यज्ञ बोला का दो निंगे उड़नो ए जंगल ये के वारा दूर का और ना हिसाब का कोरेंगे मैं कम बोला कर नेंगे ए दुआ को मैं बोला वारा बोला कर हो क्या गे बोला हिंगा मुंग दानी को कोर फेनोन ए कोर बोला वारा गिना फेम्बोय मुंग बोला लोगे बाँडो वारा बड़ो वेज्जे बाँडो माँ बड़ो मुंग ऐसो लोगे बाँडा था दुआ अंफ़ाशेफ देवानी कीने
1: बाँडा तदुआ वरुंग ऐसा पुरी कहेगे सारी ओशोए
0: बाँडा तदुआ वरुं ऐताहुरे गहेगे कैरी का ओशो है तो हमें माँ देमा से क्या वस कामे अब कल्ला गुरु अता देवी फामी होती एक अपने मालम कोरेंगे बेटा डो हंटी बिकू दिन न देन हादिया है
1: मिया दा कोने
0: हम्मा मस्सले नेंगे प्रोग्राम निमें वर कुड़ेर कोड का वेफा में आती है माँ अड़ो हाल इन्हें चेंगे आदि
1: सब
0: के वाकी वेलान यशमा वाकी वेला फाड़े का वैसे को देना इतरो हादिया गणस्तीफ बदल कोलान

0: Tigeterén, come kucha kive sama dive inge terega mejor canta ta dive hiraja le pur mesifata ka tafato neumetta ko ke matin handanko e canta ta ka me to fahor vere va ko din ta ke go to ka kuria dane ka ma dat me umid korani meharo me wahak dakkala ni met ke program ge emme fahu baveriya ya mi faharu ge baveriya ki aini assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: aini
1: apa
0: kenen halu
1: rangal
0: ani ki kollani mi adu kokkay ke kulani koche kulani me
1: eki
0: wattaru ecche aini kokkay ko kulero ऐमें बड़ा गायनी बालानी कौन कमका?
1: ठीक है।
0: को क्या को कुड़ेंगुड़े रायनी ऐमें बड़ा बालानी कौन कमकंग है? को क्या तादुनो है उड़ें किहने तो हादानी तो? ओके अंगे वेस गेल्लो में नोए कुड़ेंगुड़े रो उड़ेंगे गोते तो? ओके हम विमा किंगा गुरुतर दामा
1: lapa
0: kuratung akuren naganda me ar baaki me ati ting akuru ra ba laviani kon akuren nagani ra ba laviani
1: ba
0: okay hemma ba go masekken balalani ge
2: dado
0: dado emme fahun dado ves negije यदि के प्रोग्राम को हम हो रही हाँ मासिक कत्ता के स्कोम में से कुछ जगह कॉल दे विच तो दादो का मेवा को तक कि पंचे नोने रावरे मिज है नहीं क्या मेफार इतिफागों मेले बोने पंचे क्या अबे मैं बंदी तारते बड़ो आलाफ दत्ता क्याल देना क्याल देने में तारते ब्रांगल कॉल आफ बंदी गेरागा गई क्याल दे मिंगे तैयार
1: Papa.
0: Fila oto bulale bodu. Fila oto.
1: Bodu bulale. Fila oto.
0: Raga kya laba? Bandi ke raga. Ekon bandi inge nya masalenne?
1: Fila oto.
0: Ekko bandi inge ta?
1: No.
0: No, nenge. Hama datta kyaal denenge?
1: No.

Wara rid hadi again Steve mi harum baddo kolli mi adge program ge kurwa ta ai konge mi adge program ge jumla ha ku dinna wa ha dakka le je ai in tuga abdullah rana yashmu adi aini e mami ha ku ding ge madu ge datme mi kurwa ta na gani mi adge program un inam le pani me kujja ka hema e inam mi adu mi kenda kujja ki tuga ऐ मतुगा वारा बड़ा मरहबा दत्त में गोला दाना तुगा एं इनाम हवाल कोल देंगे ऐ मम्मीत के प्रोग्राम के वस निमुमा हमें अम्मीती आधे फा उम्मीद करा मम्मीत के प्रोग्राम के वस तिको देना तफा तो गिना मालूमात तक ले बोनो तिको देंगे हुनार तक तरगी कोरा की तुर फुर्सत तक ले बोनो वारा फायदा हो रे प्रोग्राम का वी कमंगे ऐ मम्मीत के प्रोग्राम वस निम्मा लाने वाह क्यो तिको देना एको गणेश स्टीफा ऐसा रिक जंगल का बुढ़ाल का दुनिया उड़न, ऐ जंगल एक बार दूर का और न हिसाबे का खोरेंगे होए, मिकम बुढ़ाल का नेंगे, ऐ दो को मे बुढ़ा वारा बुढ़ा करो हिक्कायगे, बुढ़ा हिंगा मुंग दाने को खोर फेनोन, बुढ़ा एक औरों वारा गिना फेम्बोय मुंग बुढ़ालों के ऐताह हो रही कहे के कैरी का उश्शो है, एक फ़ोन बुला लोगे बाँडो फड़ाया के इंगोस बुला मारूए, हम वारं हिताम वेरी गोत का म्यातु के वाहक का गनी मुम म्याती है, हम अन्न हफ्ता का इसमें फ़द तफातु, आ वाहके लेलों के उम्मीदों का, देखो देर नंगा अन्न हफ्ता के प्रोग्रामेस दावत देमो में Program forum ka technical gotun ehi vedini ifada ta di program produce kuri azza datta. Uri haku denes vara baaj veri ufavri dohkan edamu vaki velana. Wassalamu alaikum.

0: FM बैंड।
1: इंतजार कर ला पा
2: मति वेरी फते फागति मगाए हिदायते
3: एम में सीधा वेगंबा थेदु मगु का साबित वे होरुमा
1: इस्लाम दीनु के अकीदा वरुकद कुरुमा
3: देदुनिये के हायाय बाच वेरी कुरुमा
1: इस्लाम दीनु के कंकमा गुलेगतुं दीनी इल्म वेरिना सुवाल कुरफा

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य चाडू प्रेजेंट करूंगे दायराइन मदर साधक के दरिवरूंगे हुने रखा कालो
3: शाय ऐडो हो उसको कैप्टन के मागाम लेबोंगे रो शाय कौन काले हो सास्ता के खोरे वोने
4: हम वरा वरा उफाल
5: मजीदिया स्कूल की राज्य के निजामी थावलिम के मुन्नारो ऐ जमानी निजामी थावलिम के फैशन
6: अलगन में गे स्कूल गाहिंगा कंतत्तका अलगन में होदा फवा कामयाबी ता हिस्सा कुरंदी बे मी फुर्सत की अलगन में दारिवरुन नल्दी बे वरब बड़ू